दुष्ट जितै उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुहि तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्य है ताके कौन निक नहीं है रक्षा हुए ता है सब काला दोस्त अरेस्ट टरे तो

दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी आओ।

ठगी जाहि जिनके राम बसे मन माहि तथे भगत वसै के लोह करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नर निहाल तथाए खंड मंडल वर भांजे को कथाए तय अंत नंद तथा लोह लोह आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेख्या विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाव हारा धीर सुनियार हरण मत वेद हथियार

नाम्यकाम में भुजंग प्रयाद शांद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र भरती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र कपकाले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिया चत्र चक्र दानिया चाचरी शांद न सत्रै न मित्रै न परम न पित्रै न कर्मं न काय जन्म अजाय न चित्रै न मित्रै प्रेह पवित्रै प्रति सयादि सयादृश्य कृशय भगवती शंद त्वै प्रसाद कहते कि आओ शिज दिस कि आप पिज पिस है कि आगंज कर में कि आप पंच पर में कि आप पिज लोक है कि आदित सुख है कि भूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा है कि धर्म तो जाए कि आसुख भरने के सर्वा भरने के जगत कृतियां कि छत्र क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपाउन पे कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्र महीन है कि अधीन है कि रोजी रिजा कह रही मेरे हाक है कि पाक बेऐब है कि गैब लु गैब है कि अबुल गुनाह है कि शाह हंसाह है कि कारण को निंद है कि रोजी देहंद है कि राज निंद राज करहीं मैं कि कर्म करीम है कि सर्वमंगली है सर्वमंगली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देशा है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देशा है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र के सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र पोख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है कि सर्वत्र था जापी है कि सर्वत्र थापी है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वम कलीमे के परम पहीम है कि आ कलाम में कि साहिब कलाम में कि हुसनुल वजू है तमाम रुजू है हमें सुनो सलाम में सली खत्मोदाम में गनी मुल से कास्त है गिरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम में

स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रवाह है, सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अवेदी अनूप है, समस्तो प्राज है, सदा सर्वसाज है, समस्तो सलाम है, सदैव अलाकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ऊंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिवर्ग त्रिबाध्य अगंजे अगाध्य सुपंग सर्वभाग्य सो सर्वा अनुरागे त्रिपुर स्वरूप है, अचिद है, अछूत है, कि नरकम प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, नरुक्त सदा है, विपुक्त सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंद है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटह है, अगह है, असम है, अगम्भ है,

सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणु सर्वंत्राणु सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंयोक्ता

कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है, हम सुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुसन चिराग है, कि कामुल करीम है, कि राज करहीम है, कि रोजी देहंद है, कि राज करहेंद है, करीमुल कमाल है, कि हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकम प्रणास है, समस्तुल निवास है, गंजुल गनीम है, रजाए करहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकम प्रणास है, बहिस्तुल निवास है, कि सरबुल गबन है, हमेशुल रवन है, तमाम रुतमीन है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अदीस है, आदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचुन प्रकाश है, कि अमितो सुबह

करुणालय है अकालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है तृत के तन है जग के कर्ण है मन मानिय है जग जानिय है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से है खलखंड से है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजवाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है पव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता है परमात्म है सर्व आत्म है आत्मवस है जस के जस है भुजंग पर्यात शांति।

काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की ओ बेदराज ब्रह्मा ज्योति ओ।

नमस्कार तस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट की अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान न कट कट की पट पट की जान जाबुद कर करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरे निरालम जान वेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब

अंगीकार्यो करे तेरा कार्य सब सुवर्ण सुमना गला सुमरा स्वामी सो के मनोविसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सुलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां वड़ियाइया कह नानक सुनो संत हो सब तरह प्यार हो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पंच सब तत् घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच तू तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो सिनाम हर कह लागे कह नानक तै सुखुआ तित करो अनहद वाजे

सुन प्यार हो अकथ की करह कहानी करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइये तन मन धन सब सौ पुरख हुकम मनिए पाइये हुकम मन्ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

कि कर्म कमाया तुत शरीरा जातु जग मह आया हो जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिने अवर न देखो कोई हर बिने अवर

कर कृपा प्रभ मिले गुर पूरे चरनी लाया हर संग सोहाई पाया जह जाइए तहां सोहेले कर कृपा प्रभ मिले हर गुण गाव हो सदा सुबाई

0: कवन मुहूर्ते कवन रस्ताने गर्व अगर मैं तिरे अबारिया पर जोबन भोजन सुख सूद मुख प्याओ बैठ को दैन बख्श रहो तो नानक सीजे सुत प्रात मीत बंता संग हसै सुखदाई पवन पाप कमला सगल समग्री संग साथ बसा
1: तिसे त्याग
0: अवर संग रचना

0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग पढ़ के सो ज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा,
1: साध संग सब हो तन मेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक उपर जतन,
0: साध की महिमा बन कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा प्रभ में समानी,
0: साध के संग गोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर फले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पंचा,
0: साध संग हुए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर बहन,
0: साध के संग न कतहु तावे,
1: साध संग अस्त मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक सो प्रसन्न,
0: साधु साध संग दुश्मन समीत,
1: साधु के संग महापनीत,
0: साध संग के सिंह नहीं बैर,
1: साध के संग न भीगा पैर,
0: साध के संग ना ही

0: परी।
1: जैसे जल में कमल लेप,
0: जैसे सूर सर्व को सोख,
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान,
0: जो वसुदा को खोदे को चंदन लेप,
1: नानक जो पावक का सहज स्वभाव,
0: जैसे मैल न लागे जला,
1: जैसे तारु पर आकाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान,
1: मन अपने है सब ते नीचा,
0: नानक जिन ब्रव आप करे,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार,
1: ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार,
1: ब्रह्म ज्ञानी अहम्ब त्यागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कै सकल मन माहे,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,

कहो अपार सगल निस्तार अष्टपदी मन में प्रीत निरंजन दास साध की टहल संग संग हेत सब ते जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते डरे नानक कोट मद को ऐसा पारस बिसन की माया ते होए पिन तिस वैष्णो का निर्मल धर्म केवल भगत कीर्तन संग राचै सब ऊपर होवत कृपाल नानक हो वैष्णो परम गत पावै सगल त्याग दुष्ट का संग कर पूजे सगल पार ब्रह्म तिस भगौती ही मत उत्तम होवै मन तन अर्पै बिशन प्रीत नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै राम नाम आत्म मैं सोतै उस पंडर के उपदेश जग जीवै सो पंडित मेर जो नावै नानक उस पंडित को सदा देश चौवरना में जपे को नाम सा संग पावे जन कोए पास प्रेत मुक्त पाथर को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म तिसका नाम सत राम दास दास संतन पाए दिन पाया सो दास दरगह परवान तिस दास को सब सोजी परे ऐसी जुगत नानक राम दास जीवन मुक्त सो कहावै सदा आनंद नहीं वियोग तैसा अमृत तैसी वे खाटी तैसा रंग तैसा राजान नानक पुर कहिए जीवन मुक्त जित जित का रख है तैसा ते नाओ प्रभावै सोई फन होग लखे न जाहे

सिर फिरे भार, हर दागे को कैसे गवे, किसे भलाई निकटना आवे, को नानक ताकि निर्मल सोए, तावई सो सुख नाही कोए, तबला गर्भ जोन में फिरता, तबला गले चलना ही चीत, तबला गतार मराए देश जाए, गर्पसा नाल को हो छूटे, तृप्त ना आवे माया पछे पावे, ना तृप्तावे खखा मरे, सुपन मरोत में ते सब काजे, बड़भागी किसे प्राप्त होए, सदा सदा नानक हर जाप, इसके हाथ कहाँ विचार, आपे आप प्रभ सोए, सबते दूर सबू के संग, आपे एक आपे नेक, नानक सद ही रहा समाए, आपे रचिया सब के साथ, सब सब करने हार, थान थन अंतर एक सोए, कौतुक करे रंगा पार, नानक कीमत कहन न जाए, गुर प्रसाद किने बखियानी, कोट बदेख ने बिरले चीना, अत सुंदर पार नूप, कट कट सुनी श्रवण मुख्य।

0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सोगा हीन,
1: संत के हत्ते को रखे ना कोए,
0: संत के दुखन थार प्रयास होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भीतर है,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काज लगे,
1: संत के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन तिग जोन करमाए,
1: संत के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच न जाए,
1: संत दुखी का थाव को नाए,
0: नानक संत पावे ता हो ही गत पाए,
1: संत का निंदक महा हत ताए,
0: संत का निंदक हंट कर न पाए,
1: संत का निंदक महा हत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राजते हीन,
0: संत का निंदक दुखिया दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बजोग,
1: संत की निंदा दुख में दुख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डन लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी महा अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा भिखारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत के दुख ना सबते ठरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाओ,
0: नानक संत पावे ता लए मिलाए,
1: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी को ज्ञान परमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत के लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाही,
0: आपन ही जापे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर न राखन हार,
0: नानक संत पावे ता लए उबार,
1: संत का दुखी इयों बिल लाए,
0: जो जल में उठ मछली तड़फड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावे की तन नहीं तड़पे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो वो आटल के माहे हिला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सब मिथ्या कहत,
1: कीर्त निंदका तुरही पया,
0: नानक जो तिस पावे सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जवाइए,
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी हो चले रासा,
1: संत के दुख ना तिष्ठे कोई,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: पाया कितना मिटे कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: प्रभु की उसत करो दिन रात,
0: तिसे त्यागो सास ग्रास,
1: सब कुछ वर्ते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया,

0: जब आकारे कसन दृष्टिता
1: पाप तब खाते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संग माद
0: जब इसका वर्ण के न जापत
1: तब हर्ष तो हुकुम किसे व्यापत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: तब हो कहां कस होवत परम
0: अपन खेल आप बरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद भगत का किसको गनी
0: जब एक हरक पार
1: तब नरक स्वर्ग कौन तार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब से सात कहो कत ठाए
0: जब आपे आप अपने जो तर
1: ता कवन डरे कम कत डरे
0: अपन चल तप करने हार
1: नानक ठाकर अगम पार
0: अपना सी सुख अपने आसन
1: ता जन्म मरण कहो कहा बगासन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: ता जब की त्रास कहो कत होए
0: जब अविक्त गोचर प्रभ एका
1: ताप चेतर गोवत कित पूछत लेख
0: नाथ निरंजन गोचर गाते
1: ता कौन छुटे कौन बंधन बांधे
0: आपन आप ही चर्जा
1: नानक आपन रूप आदि मर्जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पथ होता
1: तब मार कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: ता कौन मान कौन अभमान
0: स्वरूप केवल जगदीश
1: ता सच जलात कहो कीस
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: ता किसे भूख कम तरतावे
0: कर्ण करावन कर्ण हार
1: नानक करते का नहीं समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कौन माई बाप मित्र सत पाई
0: सर्व कला आपे परवीन
1: ता भेद कटेव कहां को चीन
0: अपन आप उरतारे
1: ता सगन सगन कहा बचारे
0: अपन ऊंच अपन आप नेरा
1: ता कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
1: नानक अपनी गात जानो आप
0: चल अशेद भेद समाया
1: हुआ किसे पे आप तमाया
0: आपस को आपे आदेश
1: क्या उनका नाही प्रवेश
0: एक कह एक एक भगवंता
1: ता कौन चिंत किस लागे चिंता
0: अपन आप पतियारा
1: ता कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा
1: नानक आपको आपे पहुंचा
0: आप रचियो परपंच कार
1: क्या उन में किन्नो बसार
0: पंत पही कहावत
1: ओ नरक को स्वर्ग बचावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: ओ मैं मोह परम पै पार
0: सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओ बिख्यान
0: अपन खेल आप कर देखे
1: हेस पहुंचे ता नानक के
0: अवगत भक्त है आप
1: ता पसरे प्रसाद संत प्रताप
0: वाक का आप तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप कौतक करे अंत चोज
1: आपे रस भोगन जोग
0: भावे तिसे अपन न लावे
1: जस भावे तस

ही मैं इसका उत्तरा कहना जाई अचंद पसमात नानक ते जन सोची पाए कटर प्या प्रया भगवंत सर्व लोग पूर्ण प्रतपाल जैसी आज्ञा तैसा कर्म

सर्वेभ्यापीरां सङ्गरचन सप्तवचन साधु सब कहत कारण करावन हार प्रभ जाने नानक दर्शन देख सब मोही तस पावे सगली उत्पत इस पावे ता एकम कार जस पावे तसलय मलाए आपे आपा भरपूर नानक ते जन आप बजाए सब नैना पेखन हारा आपन जस आप ही सुना आज्ञाकारी किन्नी माया जो को सहना सो आपे कहे नानक जा पावे ता लए समाए उरे कहो किने कछ करा आपे जाने अपने जी की ओत पोत अपन संग राच दूसर होए तसु जी पाए गुर प्रसाद नानक हो जान आम लाए ले प्रसोए जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत जस प्रसाद संग जत तराया जन के संग

रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बांशत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए।

धर्म दृढ़ हो हर नाम ते आवहो, सिमृत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरपुरा आराध हो, सब किलबिख पाप गवाया, सहज आनंद होआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया,